अज मैं ओशे घरों लिया के आप नू शिकाया ता स्वामी रामानंद जी कहन लगे पाई उसकी मनोकामना पता ही की सी उच्चारण करो श्री वाहिगुरु क्योंकि जिसका शकिए उसका कारज भी करिए उसते तो मन विच ए भावना है भई महापुरखा नू भोजन करा के ते मैं ए उदे बदले दान लवा के मेरे घर कोई बूटा लग जावे उदे घर कोई औलाद नहीं सी होंदी इस प्रसाद पिछे तो भावना है भई पुत्र दी ते फिर जे लियाए तो फिर उना दी भावना भी पूरी कर जा हुण तैनू उना दे घर जन्म लेना पेगा ए चम्यारा दा घर सी जिथे भगत रविदास जी दा जन्म होया ते हुण दुध नहीं पींदे बड़े जतन कीते बड़े सियाने सदे पर मां दा दुध नहीं सी पींदे क्योंकि स्वामी रामानंद जी दे नाल पूर्व जन्म दा संग होण करके अंतरजामी स्वामी रामानंद जी अज चम्यारा दे महले विचों आ लंगे इन्हां ने बेनती की थी महाराज साडे ग्रह

रब दा सुनेहा देंदे हन भाई आओ जुड़ो सच दे नाल ए दुनिया दे लोको क्यों परमा भुलेखिया विच पए हो एक परमेश्वर दा नाम सच है ओदे नाल जुड़ो आपे ही सारे पदार्थ प्राप्त हो जाणगे ते इसलिए भगत रविदास जी कहंदे ने तुम जो नायक आशो अंतर जामी प्रभु ते जन जनी जय जन ते स्वामी तो असी भी कोई सेवा कर दिया।

आवाज आई कि इस धरती ते बड़ियां पवित्र नदियां दरिया हन, आ समुंदर दा जल तेरे हाजिर है, एक बूंद ले इतना तरस रे, इतना व्याकुल

काज ना कछु है। हे निरंकार, ए जितना भी जल है ना धरती ते, ए मेरे किसे कम नहीं। जिन्हां दे हीए विच शिक है मालिक।

महत्वपूर्ण सीमा तक के तहत एक सन्मान्य डिमांड निकाले निकान संकट दूरदर्शन की दूरी देकर बड़ी अच्छी के जिला में बैठी दूरदर्शन जो आप भी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलियां तो आपकी मुस्तफा कटिया फिर आपकी ने छोट लेकर आपको उत्तर बाद में जाना है एक गल नारी घट आज हो गई सब कोर्ट पैदा आगे हो गई थे पैसा जी ने आपने बड़े सुंदर अंदाज राज उस संगीत गलत गलत कितने हम सच समझियो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी दशरथ साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सर संगीत जो संगीत है गाँव का ये गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये करना जी गलत पै गई कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत ना बनता गल है आज गल है मेहनत जिनकी की सुपात है जिला मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की वोटिंग मिलेगी पहली गल साडे ते अखर लग गया है यह तो आड़ है सच हिंदी पैसा जी कहा तो खाली बकरा बिल्कुल नहीं मिलता सी इसे तंत्र जी दूरदर्शन की है मैं दो गल कह के सच हिंदी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाँव के पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कुछ स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आद का स्वरूप है ना परमेश्वर एक अलग बात है जब जरूर सब समझ है कि कीर्तन की है तो फिर सचन की आबादी की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े का भुगतेंगे लास्ट 25 मिनट टाइम है लास्ट तकरीबन 20-22 मिनट है समाप्ति करेंगे शब्द की ठीक है आपे खुद चेला है आपे हर सब चोट बनानी हालात तकलीफ है यत्न करेंगे क्या भी नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी अच्छे के बिल्कुल प्रतीक है आओ आपकी मदद तक बात मैं पूछ सकते मैं कब तो नदी से वाहे

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय के रागों विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ट रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इसे राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इसके गाउण का समा दिन का पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। ये गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है। इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इसन गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो रामकली राम मन वसिया ता बनिया सीगा।

कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं ते गुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा, ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा, ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खो लैंदा, किते ओह वेद दा रूप बन जांदा, किते ओह तिन्नां गुणां दा रूप बन जांदा, किते ओह सर्व गुणां दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा है। ओह अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेड़े जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हन। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाणा जो महाराज साहिब जी दा असल अस्थान है, उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता है गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता है। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे, बड़िया बड़िया वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां, साइंस इस दे विच है, संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं था ते एक चीज नूं नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं था नहीं, इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर, ओ झूठ नहीं, बाकी सब वस्तुआं संसार दियां लभ लो इस दे विचों, पवित्र स्वरूप है, जागदी जोत है, इस दे विचों जड़ी वस्तु लभोगे, क्योंकि रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बड़े बड़े पदार्थ ने, लभण दी लोड़ है, लभ जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है, आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उस तों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल। ऐसे गुर को बल बल जाइए, रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे, शीश उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा होवे, ते कहिए महाराज तूं ते मुक्त है, सानू मुक्त कर दे, असी मैलां दे भरे होए हां, पापी जीव हां, सानू मुक्त कर सतगुरा, तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीश दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दियां मैलां रह जान, महाराज तूं मुक्ति दा दाता है, आप मुक्त मोहे तारे, मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे। पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, हथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके, भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा, पूर्ण गुरु दा संग हो रहा, किते महसूस करो, किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना, किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा है। अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा, किन्ना सुखदायक हुंदा, किन्ना रिलैक्स मिलदा, किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जा